नमस्कार, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैसाख मास की 22 तारीख, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।

0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

个经本。स्वामी विवेकानंद का कथन है आदर्श अनुशासन मर्यादा परिश्रम ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता।

FM 107.9 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा। हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम संगीत सरिता में सुबह 6:45 पर श्रृंखला ऐसी लागी लगन का पहला भाग पेश किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत आप सुन सकते हैं सुबह 7:00। 7:30 पर कार्यक्रम होगा हम है रही प्यार की।

प्रसारित किया जाएगा सुबह 8:15 पर। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन सकते हैं पहले सुबह 8:30 पर और फिर रात 8:15 पर। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आज का अखबार प्रसारित होगा सुबह 9:30 पर।

0: फिल्मी और गैर फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सफर सुरीला पेश किया जाएगा सुबह 10:05 पर। दिन में 11 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम FM लाइफलाइन। आज इस कार्यक्रम में बच्चों में आंख का कैंसर कारण लक्षण व इलाज विषय पर डॉक्टर मनु सैनी एसोसिएट प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर PGI चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार की बातचीत पेश की जाएगी। दिन में 11:30 पर सुनिए लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हे मित्रां दे। यादों की महफिल ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:05 पर। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी होगा दोपहर 2 बजे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे पेश किया जाएगा 2:30 पर। सखी सहेली इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सेल्यूलॉयड के सितारे। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुनवाई जाएगी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। कार्यक्रम अमृत बाणी होगा शाम 6:30 पर। जयमाला ये कार्यक्रम सुनिए शाम 7 बजे। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवामान कार्यक्रम में रात 8 बजे झलकी सुनिए विश्व प्रेमी सम्मेलन। रात 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेता महिपाल पर केंद्रित रहेगा। और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। झरोखा में ये था हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस कान।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 186।

कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है, लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वे माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानी की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती, मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है।

कर रहे हैं भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि हैं श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह।

0: पहली कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आधुनिक जीवन के कोलाहल में मन अक्सर ही विचलित हो जाता है। मन के इस विचलित प्रकाश को जब आध्यात्म के शीशे से गुजारा जाता है, तब भक्ति के विविध रंग उपस्थित हो जाते हैं। संगीत सरिता का प्रवाह आज से कुछ दिनों तक भक्ति के सागर में समाहित होगा। इन कड़ियों में भक्ति के अनेक भावों, भक्ति के अनेक रंगों से हम परिचित होंगे। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है उन्हें, जिनके गाए भजन सुनकर हमारी सुबह होती है, जिनकी गाई भक्ति रचनाएं सुनकर हम सबका बचपन समृद्ध हुआ, जिनके भजन के सुरों से हम अलौकिक संसार में पहुंच जाते हैं। तो हमारे भीतर भक्ति समर्पण और जीवन दर्शन की लौ जलाने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनूप जलोटा जी। अनूप जी शाम चौरासी घराने के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा के सुपुत्र हैं। पिछले कई दशकों से अपनी गायकी के माध्यम से श्रोताओं पर रस वर्षा कर रहे हैं। भक्ति संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद अनूप जलोटा जी का। स्वागत है अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: अब हम तबला वादक आशीष झा जी का स्वागत कर रहे हैं।
3: नमस्कार।
1: हारमोनियम वादक अजय जोगलकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद ममता जी।
1: श्रोता, जैसा कि श्रृंखला का नाम है ऐसी लागी लगन, आज हम इसी भजन से शुरुआत कर रहे हैं। अनूप जी, ऐसी लागी लगन जो भजन है हम सबके मन में है और जबान पे है, जब भी भजन का जिक्र होता है तो शायद हम ये भजन सबसे पहले गुनगुनाते हैं।
2: ऐसी लागी लगन की प्रसिद्धि कुछ इस प्रकार की है कि मैं कभी कहीं एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ या कहीं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ तो कोई व्यक्ति मेरे पास से गुजरता है, मुझे देखता है और ऐसी लागी लगन गुनगुनाता हुआ निकल जाता है
1: जी।
2: वो ये बताना चाहता है कि मैंने आपको पहचान लिया
1: जी।
2: तो मेरे नाम के साथ और मेरी उपस्थिति के साथ ऐसी लागी लगन कुछ इस तरह जुड़ गया। ये गाना कैसे बना इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि 1977 में मैं न्यू जर्सी अमेरिका में एक अपने मित्र के घर लंच खा रहा था। उनकी पत्नी भी थोड़ा गाना गाती थी, तो उन्होंने जब मैं खा रहा था खाना तो एक छोटी सी बुक मेरे हाथ में दी कि देखिए इसमें कुछ भजन लिखे हैं, और मैं वो लेफ्ट हैंड से वो एक एक पेज पढ़ता जा रहा था, राइट हैंड से खाना खा रहा था, और एक पेज पे मेरी नजर टिक गई और उस पे लिखा हुआ था ऐसी लागी लगन। इंदिरा देवी का लिखा हुआ भजन है और मैं इसको पढ़ता रहा 3-4 बार खाना खाते खाते, और बाद में जब खाना खत्म हो गया तो मैंने उनसे कहा कि मेरा हारमोनियम लाइए, और मैंने उनको वो गाना गा के सुना दिया। मतलब खाना खाते खाते उसकी ट्यून बन चुकी थी। तो वो एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण रहा होगा कि उसी क्षण में उस गाने की रचना हुई, जिस रचना से मुझे सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। और मैं चाहूंगा कि वो भजन मैं आपको यहीं गा के सुना दूं। हमारे साथ आशीष जी अजय जी बैठे हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकार हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज विविध भारती में आप दोनों हमारे साथ संगत कर रहे हैं।

ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन।

0: वाह क्या बात है, हम तो भक्ति भाव में बिल्कुल खो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए होंगे हमारे श्रोता भी। अब अनूप जी, हम चाहते हैं कि मीराबाई की एक भक्ति रचना का जिक्र हो तो कैसा रहेगा?
1: जरूर, मीराबाई ने तो ऐसे सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं और उसमें प्रेम तो है लेकिन उसके साथ समर्पण भावना इतनी बड़ी है जो आज तक लोग सीखते हैं।

मीरा बाई से प्रश्न किया कि मैंने लीनो गोविंद मोल, इसका अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा है। तो अगर गोविंद मोल लिया है, खरीदा है, तो उसका कोई मूल्य होगा, हमको भी बता दो, हम भी खरीद लाते हैं। तो मीराबाई बता रही हैं भक्तों को कि आप भी गोविंद को खरीद सकते हैं और उसका मूल्य क्या है ये बता रहे हैं।

0: क्या बात है अनूप जी। वैसे तो सच कहा जाए तो अनूप जलोटा को जरूरत ही नहीं है कि अपने तालीम के बारे में बताएं या घराने के बारे में बताएं, लेकिन संगीत की एक परंपरा रही है अपने घराने के बारे में चर्चा करना। तो हम चाहते हैं, शाम 84 आपका घराना रहा है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें।
1: तालीम की तो बात यह है कि अभी सीख रहा हूँ और सीखता ही रहूंगा। पंजाब का प्रसिद्ध घराना है शाम 84 घराना, जहाँ के बहुत प्रसिद्ध गायक हुए सलामत अली नज़ाकत अली खान साहब, जो पाकिस्तान चले गए वहां रहे, लेकिन हिंदुस्तान में मास्टर रतन यहीं पर रहे हदियाबाद पंजाब में। उन्होंने लोगों को सिखाया, उसमें मेरे पिताजी ने उनसे सीखा और मैंने अपने पिताजी से सीखा। तो शाम 84 घराने की जो विशेषता है वो इसकी स्पष्टता है, इसकी क्लियरिटी है कि शब्दों की बहुत क्लियरिटी होती है। जो भी भजन या ख्याल हम गाते हैं उसमें एक एक शब्द इतना साफ होता है कि आप उसको भी समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है
0: जी।
1: राग तो समझ में आई जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि कहा क्या जा रहा है। यहाँ तक कि सरगम भी इतनी स्पष्ट होती है, इतनी साफ होती है कि उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो शाम 84 घराने की ये जो खूबियां हैं ये हमने अपने गाने में उतारी और अपने लाइट म्यूजिक में भी उतारी, जो भजन गजल में गाता हूँ उसमें भी उतारी, जिससे कि इसकी सुंदरता बढ़ जाती है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस आंख बंद करके बिना कुछ पूछे सुनते जाएं आपके भजन और आपकी बातों को, लेकिन वक्त का जो दरिया है बहने लगता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अब वक्त हो चला है इजाजत लेने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी आपका धन्यवाद और अजय जी आपका धन्यवाद। हम कल मिलते हैं अगली कड़ी के साथ।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रही हैं श्री अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाए या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक

0: वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: गीत सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में स्वर्ण सुंदरी फिल्म के गाने के साथ। इसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है आदि नारायण राव ने।

0: हर कोई हो रसवंती
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए मामा।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपने पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनाऊं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूलिए बिसे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आजाद फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में दो उस्ताद फिल्म से कमर जलालावादी हैं गीतकार और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

धूम तुट कर ना जन बन कर घूम आज हमारा राज।

0: रस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुबारक बेगम, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में बारादरी फिल्म से खुमार बाराबंकी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शौकत दहलवी नाशाद।

0: इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: प्रजा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मल क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मल क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCI द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

यह भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती प्रस्तुत है कार्यक्रम हम ही राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। युगल गीतों के इस कार्यक्रम हम ही राही प्यार के की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। शागिर्द फिल्म के गाने के साथ गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लो। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर
0: लो। यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में नाइट इन लंदन फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब दूंगा जिसने मुझे इतने चयन से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान नौकरी, उस परिंदे में जाने की, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गई, किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: अरे कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में हमराज फिल्म से। साहिर लुधियानवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

0: गाने के साथ ही आज का हम ही राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे

0: कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

0: अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
3: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
4: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का

0: तावीजी करण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

नमस्कार श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन नर्सों के सम्मान में समर्पित है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली नर्सें केवल इलाज में ही नहीं बल्कि मरीजों को मानसिक सहारा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका धैर्य, करुणा और सेवा भाव उन्हें समाज में एक खास स्थान दिलाता है।

नर्स का कार्य केवल दवाइयां देना या मरीजों की देखभाल करना नहीं होता, बल्कि वे मरीजों के दर्द को समझती हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाती हैं। कई बार मरीज अपने परिवार से दूर होते हैं, ऐसे में ये परिचारिका ही तो उनका सहारा बनती है। कठिन परिस्थितियों में लंबे कार्य घंटों और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा का उदाहरण पेश किया था।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें ये सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी मानवता है। ये दिन हमें नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम उनके कार्य की सराहना करें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। एक छोटा सा धन्यवाद और सम्मान भरा व्यवहार भी उनके कठिन परिश्रम को सार्थक बना सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगी और उसके परिजन और डॉक्टर के बीच महत्वपूर्ण सेतु होती हैं परिचारिकाएं। आज के दिन हम नर्सेस को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं।

0: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और चलिए आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत में योद्धा फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह, नीति मोहन ने गाया इसे, कुणाल वर्मा ने लिखा और

संगीत से संवारा तनिष्क बागची ने। तेरे संग इश्क हुआ।

लिखा और संगीत बद किया है रेनी बंडाली और तनिष्क बागची ने। निकिता गांधी की आवाज है डू यू लव मी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

0: कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड शूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज ने रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632222।

अभी आप सुन रहे थे दुकान फिल्म का ये गाना। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक, आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ कार्यक्रम चित्रलोक में।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना। एम तुराज और नासिर फराज ने लिखा इसे और संगीत से संवारा था शैल प्रीतिश और नितिन शंकर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा

0: कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए वेदा फिल्म का गाना। प्राजक्ता शुक्रे और हिमानी कपूर की आवाजें हैं इस गाने में। रैप का अंश गाया है मनन भरद्वाज ने, गीतकार और संगीतकार हैं मनन भरद्वाज ही।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या

0: पे फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहसिन शेख, ज्योति टंगरी और साथियों की आवाजों में सूरज पे मंगल भारी सुन का गाना। दोस्तों वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, चितलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। दोस्तों आज है 12 मई, आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। दोस्तों पूरी चिकित्सा व्यवस्था में नर्सेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, ये तो हम सभी जानते हैं। आज जो हम ये देख रहे हैं नर्सिंग सेवा को एक सुव्यवस्थित रूप में, इसका श्रेय जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 12 मई सन 1820 ईस्वी को फ्लोरेंस नगर में हुआ था। आपने विश्व युद्ध की विभीषिका के दौरान भी दिन रात घायलों की सेवा की और आपको लोग प्रेम और आदर के साथ द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। आपने नर्सिंग सेवा के प्रशिक्षण की नींव भी रखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सभी नर्सेस के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आइए सुनते हैं ये।

0: साल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मेरे पढ़ा जाने की उड़ान नौकरी, इस पर इंडिया में जाने की, और जिजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजों में शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म का गाना और वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सुन रहे आप चित्रलोक एक ब्रेक का तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए रांझना फिल्म का गाना, सुखविंदर सिंह के MMC सूफी एंसेंबल की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल और AR रहमान की तर्ज। पिया मिलेंगे।

आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, प्लांट यानी पौधे ही हमारे पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला

फूड चेन की आधारशिला है। इनके महत्व और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म का ये गाना।

0: व्याख्यान है।
1: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक डांस नंबर आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, अनमोल मलिक की आवाज, कुमार ने लिखा इसे, जयदेव कुमार ने संगीतबद्ध किया है, आवाज है अनमोल मलिक की, फिल्म का नाम बजाते रहो।

0: इस गाने के साथ ही आज का चितलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: मेरे अखियां रूहानी कहीं, मेरे चेहरा नूरानी कहीं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग
2: देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
5: वो मुझे कुछ काम है।
4: अरे रुको, तो
5: बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
6: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
4: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
6: क्या नहीं जानता?
4: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
6: सच में?
4: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार। आज का अखबार

आज का अखबार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर की ओर से सवेर वाली नमस्ते है जी। और सुनाइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज भी हमारी यही दुआ है, आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी का सफर तय करें। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिस डे मनाया जा रहा है। यह दिन उन समर्पित नर्सों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो दिन रात मरीजों की सेवा करती हैं। अस्पताल में डॉक्टर इलाज करते हैं, पर मरीजों की देखभाल, दवा, हौसला और मुस्कान देने का काम

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में बारी है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया।

वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और

बंगाल में शुभेंदु मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अहम फैसले, बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की मंजूरी।

0: कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब बारी है रीजनल और लोकल हेडलाइंस की।

पंजाब में निकाय चुनाव का ऐलान, 26 मई को होगा मतदान, 29 मई को परिणाम। पंजाब बोर्ड 10वीं के परिणाम घोषित, 94.52% विद्यार्थी पास, फरीदकोट के जैतो की हरलीन शर्मा बनी पंजाब टॉपर, बेटियों का फिर रहा दबदबा।

पंजाब में बिजली व सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ी। रंजीत सागर बांध में चारों यूनिटें शुरू, रोजाना 50 लाख यूनिट प्रोडक्शन। हिमाचल प्रदेश में नौकरी से पहले होगा एंटी चिट्टा टेस्ट।

25 साल सेवा, हजारों मरीजों की दुआएं, आज राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। जीएमसीएच 32 चंडीगढ़ की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पूनम वर्मा को मिलेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड।

हर वेंडिंग जोन की एक अफसर को जिम्मेदारी, रेहड़ी फड़ी वालों की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम चंडीगढ़ की नई व्यवस्था। मरीजों को बड़ी राहत, पीजीआई चंडीगढ़ में इस हफ्ते शुरू होगा मदर एंड चाइल्ड सेंटर।

और चंडीगढ़ शहर में बारिश, आंधी का अलर्ट, गर्मी भी दिखाएगी तेवर। पारा 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का ही कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करेंगे। अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आज का अखबार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। FM 107.2 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंक रोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950063

0: फोर
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
2: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना संस्कृति खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
2: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
2: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाए आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
2: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है,
3: आकाशवाणी है।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सफर सुरीला सा। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं रॉकी फिल्म के गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

सफर सुरीला सा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। गीतकार हैं महबूब, संगीतकार इस्माइल दरबार।

अब सुनते हैं जंगल लव फिल्म में अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास को। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: Children's Hospital. Call करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: तीखा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार। अभी ऑर्डर करें www.tikharrenterprises.com पर।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

कार्यक्रम का अगला गीत वारिस फिल्म से है। इसे गाया है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीतकार हैं उत्तम जगदीश।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। इस कार्यक्रम में फिल्म संगीत के बाद अब बारी है गैर फिल्मी रचनाओं की। सबसे पहले आइए सुनते हैं हैरी आनंद की आवाज में विक्की नागर का लिखा ये गीत।

श्वेता शेट्टी के गाए इस गीत के साथ ही आज का सफर सुरीला सा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुने कार्यक्रम FM लाइफलाइन।

0: एफएम लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, रेटिनोब्लास्टोमा एक दुर्लभ लेकिन गंभीर आंख का कैंसर है जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। भारत में हर साल लगभग 1500 से 2000 बच्चों में इस बीमारी का निदान होता है, डायग्नोसिस होता है, ऐसा कहा जाता है आंकड़ों के हिसाब से। और अगर इस बीमारी की पहचान कर ली जाए टाइम रहते तो 90 से 95% तक इसको ठीक किया जा सकता है। इसी रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनु सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर पीजीआई चंडीगढ़ को। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सर।
0: और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये रेटिनोब्लास्टोमा होता क्या है, क्या कंडीशन है ये?
1: रेटिनोब्लास्टोमा एक आंख में पाया जाने वाला कैंसर है जो, जैसा आपने बताया, बच्चों में पाया जाता है। आंख के अंदर वाइट रिफ्लेक्स एक कॉमन सिम्टम होता है जिसके थ्रू इसे पहचाना जा सकता है। वाइट रिफ्लेक्स अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे बिल्ली की आंख चमकती है रात में, उसी तरह की फीलिंग और उसी तरह का परसेप्शन बच्चों में देखा जाता है।
0: जी, और ये बच्चों में ही क्यों होता है और क्यों अधिक बढ़ जाता है?
1: ये एक्चुअली एक जीन्स के म्यूटेशन के कारण होता है। तो जीन्स का म्यूटेशन जब मैनिफेस्ट होता है तब ये उत्पन्न होता है। तो जेनेटिक वेरिएशन के कारण ये बच्चों में पाया जाता है और ये एक आंख से दूसरी आंख में भी हो सकता है, मींस एक आंख या दोनों आंखों को भी अफेक्ट कर सकता है।
0: तो डॉक्टर साहब, इसमें जेनेटिक्स की क्या भूमिका रहती है?
1: अगर हम बात करें तो जो जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है रेटिनोब्लास्टोमा के लिए, जिसे RB1 जीन कहा जाता है, ये एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। इट मींस ट्यूमर्स को सप्रेस करके रखता है। लेकिन अगर RB1 जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है तो ट्यूमर्स ग्रोथ हो जाते हैं और ये मैनिफेस्ट करता है रेटिनोब्लास्टोमा के फॉर्म में। और भी कई जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है मगर मेन RB1 जीन है। तो इसी के म्यूटेशन के कारण रेटिनोब्लास्टोमा उत्पन्न होता है।
0: जी डॉक्टर सैनी, ये भी बताइए कि इसकी जो जागरूकता है उसमें कितनी कमी है और जो लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और क्यों ये अभियान चलाए जा रहे हैं, और अगर कमी रहती है अवेयरनेस की तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं?
1: यस सर, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसकी अवेयरनेस इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट करा जा सकता है, लेट स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा for the part of the patient also and for part of the doctors also. इसीलिए हर साल annually ये second week of May में celebrate होता है throughout the world. इसकी awareness, इसका early diagnosis, इसका proper treatment, proper follow-up करा सके और हम parents को भी motivate कर सके।
0: जी जी जी जी। और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि माता पिता को पता चल सके? आप सरल भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बताना चाहेंगे अभिभावकों को कि अगर किसी प्रकार के लक्षण इससे जुड़े हुए नजर आए तो क्या किया जाए और किस तरह से एक्सपर्ट की सलाह ली जाए?
1: यस सर, इसका सबसे जो कॉमन लक्षण होता है वो आंख में वाइट रिफ्लेक्स होता है। जो आंख का हिस्सा है, काला वाला हिस्सा, उसमें वाइट रिफ्लेक्स दिखता है। वाइट मतलब जैसे सफेदी सी आ जाती है, बिल्ली की आंख चमकती है वैसा। मोबाइल की फ्लैशलाइट से भी पेरेंट्स देख सकते हैं, और अगर पेशेंट फोटोग्राफ्स लेता है, सेल्फी लेता है, तो उसमें भी आंख में अलग सा रिफ्लेक्स नजर आता है और ये अलग सा रिफ्लेक्स फर्स्ट वार्निंग साइन होता है। इसके अलावा बच्चों में अगर भेंगापन आ रहा है, आंख लाल हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम्स है और एडवांस स्टेजेस में आंख बड़ी हो जाती है।
0: जी जी जी जी। तो जैसे आपने कहा एक सफेद चमक नजर आती है, तो सफेद चमक नजर आते ही आपको सावधान हो जाए चाहिए कि और तुरंत

0: एक्सपर्ट की सलाह लेनी
1: चाहिए। एब्सोल्युटली, किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी है।
0: और किसी को अगर भेंगापन हो, स्क्विंट हो, तब भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं?
1: यस सर, सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन स्क्विंटी है, भेंगापन ही है।
0: जी जी जी।
1: तो इसीलिए अगर भेंगापन डेवलप हो रहा है, रिसेंटली पेरेंट्स नोटिस कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को पास के किसी भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से दिखाइए और वहां से रेफरल हो सकता है अगर रेटिनोब्लास्टोमा है तो।
0: जी, बहुत छोटे बच्चे को तो पता नहीं चलता कि उसकी नजर कमजोर हो रही है या फिर उसे दर्द हो रही है, परंतु कुछ अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, आईज में किसी प्रकार की कोई इस तरह की दिक्कत बता पाता है, तो भी कोई सावधानी बरतनी चाहिए?
1: सर, सावधानी तो इन द टर्म सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाना ही है, कंफर्म कराना है कि ये रेटिनोब्लास्टोमा है या ये चमक है, ये और रीजंस की वजह से है।
0: जी जी जी।
1: इसीलिए सबसे पहले हम पेरेंट्स को नहीं कह सकते कि वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मगर वाइट रिफ्लेक्स एक कॉमन सिम्टम है जिसके बेसिस पे अपने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएंगे और फिर जो डिफरेंशियल्स है फिर उसकी तरफ होगा ट्रीटमेंट, उसके फिर सारे टेस्ट कराए जाएंगे, कंफर्मेशन होगा। ये क्लिनिकली ये जांच से ही कंफर्म करा जाता है, तो जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है वो इजीली पिकअप कर लेंगे।
0: जी, और रेड फ्लैग्स क्या रहते हैं इसमें शुरुआती लक्षणों में?
1: सर, वाइट रिफ्लेक्स जैसे मैंने कहा, सफेदी, स्क्विंट, आंख में अगर अचानक से रेडनेस आ रही है, पेन आ रहा है, एक ये भी सिम्टम हो सकता है, और आंख बड़ी हो रही है, ग्रोथ से नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो रही है, काला वाला हिस्सा या पूरी आंख के बाहर निकल आ रही है, तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है।
0: जी जी जी। तो हम ये जो अपना आज का प्रोग्राम है रेटिनोब्लास्टोमा पे चर्चा कर रहे हैं, ये जारी रहेगा, उससे पहले ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम लाइफलाइन आकाशवाणी चंडीगढ़ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर पीजीआई चंडीगढ़, और हम चर्चा कर रहे हैं रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि एक प्रकार का कैंसर होता है और बच्चों में पाया जाता है। हम चर्चा कर रहे थे लक्षण क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं, और इसके उपरांत अगर आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं, एक्सपर्ट उसके उपरांत उसका डायग्नोसिस किस तरह से करता है?
1: सर, इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है। डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कुछ पैरामीटर्स है कि आंख के अंदर मास है कि नहीं है उसे कंफर्म करते हैं, और फिर एम्पल ऑफ टेस्ट एडवाइज करते हैं।
0: तो वो टेस्ट क्या क्या किस किस तरह के होते हैं?
1: सर, अल्ट्रासाउंड मोस्ट कॉमन टेस्ट है जिससे पता चल जाएगा कि आंख के अंदर मास है और मास के अंदर कैल्सिफिकेशन है। अगर ऐसा दिखता है तो फिर ये देखना है कि वो जो मास है, जो कैंसर है, सिर्फ आंख में ही है या आंख से बाहर तो नहीं आ गए। उसके लिए MRI एडवाइज कराई जाती है। MRI के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि ये कन्फाइंड है सिर्फ आई में या बाहर ऑर्बिट

0: हैं ब्रेन में और कहीं तो नहीं फैल गया है।
1: और क्या ये जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनमें ये संभव होते हैं टेस्ट?
0: यस सर, अगर अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है, जनरली बच्चों को पकड़ के अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, MRI के लिए सेडेशन यूज करते हैं, थोड़ा सा बेहोशी की दवा देकर उन्हें MRI कराया जाता है।
1: जी जी जी। और जैसे कि हमने चर्चा की शुरू में भी कहा कि अगर समय रहते पता चल जाए, इसका निदान हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए, तो ट्रीटमेंट हो सकता है।
0: यस सर।
1: तो आजकल इसके कौन कौन से लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं रेटिनोब्लास्टोमा के?
0: सर, रेटिनोब्लास्टोमा की ग्रुपिंग करी जाती है। ग्रुपिंग का मतलब उसकी साइज के अकॉर्डिंग ये अर्ली स्टेजेस का है, लेट स्टेजेस का या एडवांस स्टेजेस का है। तो अगर बहुत ही छोटा है तो उसको लेजर, क्रायो, उसके थ्रू जला के ट्यूमर सेल्स को मार दिया जाता है। लेकिन अगर ये ज्यादा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, साइज बड़ी है, तो इसमें कीमोथेरेपी दी जाती है जो इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती है। उसके अलावा एडवांस्ड जो ट्रीटमेंट आ गया है उसमें इंट्रा आर्टीरियल कीमोथेरेपी है। हम डायरेक्ट आंख के अंदर भी इंजेक्शंस के फॉर्म में दवा देकर उन ट्यूमर सेल्स को मारने की कोशिश करते हैं।
1: जी जी जी। आपने कहा कि बचाया भी जा सकता है आंख को।
0: यस सर। हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं, सबसे पहले एम होता है बच्चे की लाइफ बचाना, सेकेंड एम होता है उसकी आंख को बचाया जा सके ताकि आंख निकालने की नौबत ना आए, और थर्ड हमारा गोल होता है उसका विजन प्रोटेक्ट करा जा सके, एटलीस्ट उसकी रोशनी बचाई जा सके।
1: जी जी जी। और ऐसे कौन से मामले होते हैं जिनमें आंख भी निकालनी पड़ जाती है?
0: सर, लेट स्टेजेस का है जिसमें मास अराउंड 50% से भी ज्यादा ग्लोब को ऑक्यूपाई कर चुका है, और आगे की तरफ आंख के आगे इंटीरियर सेगमेंट जिसे हम कहते हैं वहाँ स्पेल हो रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस कंडीशंस में आंख को निकालना बेहतर होता है।
1: जी जी जी जी। तो चर्चा हमारी जारी रहेगी क्योंकि ये रेटिनोब्लास्टोमा है, गंभीर बीमारी है एक तरह की, तो अधिक तो आपसे चर्चा हम विस्तृत जानकारी लेते ही रहेंगे, परंतु बीच बीच में थोड़ा म्यूजिक भी हम सुनेंगे अपने श्रोताओं के साथ।
0: यस सर।
1: इस गीत के बाद आपसे पुनः चर्चा जारी रहेगी।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुन रहे हैं कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर पीजीआई चंडीगढ़। एक श्रोता ऑनलाइन हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सर, मेरा नाम सुनैना है।
0: जी सुनैना जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं चंडीगढ़ सेक्टर 15 से बात कर रही हूँ।
0: जी हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर। आज बच्चों में एक प्रकार का जो ट्यूमर होता है आईज में, उसके बारे में चर्चा हो रही है। अपना सवाल पूछें।
1: जी बिल्कुल। तो मेरा नेफ्यू है 4 इयर्स का, तो अभी रिसेंटली उसके आईज में बहुत ज्यादा रेडनेस और उसका विजन भी बहुत वीक हो गया है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि जैसे मैंने रिसर्च करा जो रेटिनोब्लास्टोमा है, तो क्या ये सिम्टम जो है ये उसी के रिलेटेड होगा या वो विजन के रिगार्डिंग होगा?
2: सुनाना जी, सबसे पहले तो बच्चों में जो रोशनी कम होती है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है चश्मे का नंबर लगना।
1: ओके
2: तो सबसे पहले आप अपने पास में या फिर पीजीआई में जाकर आई चेकअप कराइए। बच्चे का पर्दा देखा जाएगा और पर्दे से पता लगा सकते हैं कि ये रेटिनोब्लास्टोमा ही है या चश्मे के नंबर के कारण बच्चे का विजन ड्रॉप डाउन हुआ है।
1: ओके मैम, और जो पुअर विजन और जो रेडनेस आईज में जो है वो कॉन्स्टेंट है?
2: रेडनेस बच्चों में एक एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है, उसके कारण भी देखी जाती है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से इवैल्यूएट कराएंगे तो आप बेहतर जान पाएंगे, क्योंकि मैं मेरा पर्पस डराना नहीं है रेटिनोब्लास्टोमा के लिए, बस जस्ट एक वार्निंग साइन से वो बताना है।
1: ओके तो मैम, जैसे ये रेटिनोब्लास्टोमा है तो जिसमें ब्लास्टोमा टर्म है तो उससे हम लाइक क्या अंडरस्टैंडिंग लें?
2: ट्यूमर, ब्लास्टोमा इज अ ट्यूमर, रेटिना का मतलब ये रेटिना से ओरिजिनेट हुआ है।
1: ओके ठीक है मैम,
2: मेरी राय यही है कि आप पीजीआई आ जाइए, वहाँ बच्चे के पूरा एवैल्यूएट करा लेते हैं।
0: जी शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो थे लिसनर जो अपना सवाल आपसे पूछ रहे थे। इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिवेंशन किस तरह से की जा सकती है, क्योंकि अगर जेनेटिक प्रोफाइलिंग करवाई जाए जो प्रोबेबल कपल्स हैं आगे चलकर फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं,
2: यस सर,
0: वो किस तरह से प्रिवेंशन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं?
2: यस सर, एक तो जेनेटिक, अगर आपकी फैमिली में रेटिनोब्लास्टोमा का कोई भी पेशेंट है तो हम एडवाइस करते हैं दोनों ही पेरेंट्स को या फिर जो भी प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली, ये जेनेटिक एवैल्यूएशन कराइए। जेनेटिक एवैल्यूएशन में जो RB1 जीन है वो डिटेक्ट हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके बेबीज में 50% चांसेस हो सकता है। और अगर फिर भी आपको डाउट है, सपोज प्रेगनेंसी है, तो आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इनिशियल स्टेजेस में भी टेस्ट करा सकते हैं, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के फ्यूचर में रेटिनोब्लास्टोमा होने के चांसेस है या नहीं।
0: बिल्कुल। और माता पिता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर बच्चे में पता चल जाता है, तो किस तरह से उसका फॉलो अप करना चाहिए, इलाज पूरी तरह से किस तरह से किया जाना चाहिए?
2: यस सर, अगर बच्चे में डिटेक्ट हो जाता है रेटिनोब्लास्टोमा तो सबसे पहले तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट, रेगुलर फॉलो अप मस्ट है।

0: एक आंख में है तो दूसरी आंख भी रेगुलर मॉनिटरिंग करानी है, क्योंकि दूसरी आंख में भी प्रोबेबिलिटी होती है डेवलप होने की।
1: जी, और जैसा कहा जाता है कि इस बीमारी की अगर जल्द पहचान हो जाए तो बचाव किया जा सकता है।
0: यस सर।
1: तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को, पेरेंट्स को, कि किस तरह से छोटी छोटी बातों का, आईज का, बच्चों का ध्यान रखा जाना चाहिए? वैसे तो आपने शुरू में भी बताया पर एक बार दोहरा दीजिए।
0: हाँ, पेरेंट्स के लिए सबसे पहले तो अगर रेटिनोब्लास्टोमा डिटेक्ट होता है तो जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कीमोथेरेपी के लिए फॉलोअप को, आपको रेगुलर आना है। ये चूंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एग्जॉस्टिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्ट कंज्यूमिंग ऑल्सो है, लेकिन रेगुलर आप आएंगे तो हम, अगर दूसरी आंख में होने की प्रोबेबिलिटी है या दूसरी आंख में भी है तो उसको वहीं रोकने की कोशिश करेंगे ताकि ट्यूमर आगे ना बढ़े, ट्यूमर सेल्स को नष्ट करा जा सके और दोबारा ना हो इन फ्यूचर में बच्चे के केस में। इसलिए रेगुलर फॉलोअप मस्ट है, जैसे जैसे एडवाइस है वैसे वैसे आना है, क्योंकि कीमोथेरेपी देने के बाद भी उसका इवैल्यूएशन की साइज छोटा हुआ, ट्यूमर का पूरी तरह से नष्ट हुआ या नहीं हुआ या दोबारा तो नहीं हो गया, ये इवैल्यूएट करना। तो फॉलोअप, अर्ली ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट मस्ट है सर, एंड की टू सक्सेस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा।
1: जी, पीजीआई एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसमें लगातार रिसर्च भी होती रहती है, तो इस बीमारी के लिए कोई रिसर्च हुई हो, कोई आंकड़ा कुछ कहते हो जिसे आप लोगों को अवेयर कर सकें कि क्यों ये बढ़ती है या फिर इसकी ओर ध्यान ना दिया जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं?
0: यस सर, रेटिनोब्लास्टोमा के सारे तरह के मरीज पीजीआई में आते हैं, अर्ली स्टेजेस से लेकर एडवांस स्टेजेस तक के। एडवांस स्टेज ऐसे भी आते हैं जो पूरे शरीर में फैल चुका होता है, जिस कंडीशन में बच्चे की भी जान पे बनाती है और बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन्हीं एडवांस स्टेजेस के लिए रिसर्च पीजीआई में निरंतर कोशिश करता रहता है। चूंकि ये एडवांस स्टेजेस का कैंसर वेस्टर्न पॉपुलेशन में नहीं देखा जाता, ये लो इनकम और जैसे इंडिया है मिडिल इनकम कंट्रीज में देखा जाता है, तो इसमें ये रिसर्च जा रही है कि हम बच्चों को कौन सी कीमोथेरेपी दे, कितनी डोज दे, कितनी एडवांसेस में करें, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सर।
1: जी जी जी, तो और कुछ आप कहना चाहते हो, क्योंकि ये अवेयरनेस का एक पखवाड़ा है आपका, तो क्या कुछ और संदेश आप देना चाहते हो हमारे श्रोताओं को?
0: मैं यही कहूंगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, अगर वाइट रिफ्लेक्स है तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, इसके अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानें, टाइमली ट्रीटमेंट कराएं, रेगुलर फॉलोअप में रहे ताकि आप अपने बच्चे की जान बचा सके, आंख की रोशनी बचा सके, आंख बचा सके।
1: जी, तो श्रोताओं इसी के साथ आज का FM लाइफलाइन कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, और हमारे साथ थी डॉक्टर मनु सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, एडवांस्ड आई सेंटर, PGI चंडीगढ़। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा आकाश भारद्वाज का, और अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही देर बाद 11:30 पर आप सुनेंगे लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुनेहे मित्रां दे। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर एफएम 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल
1: आपका अपना एफएम 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
1: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
0: ये आकाशवाणी है।
1: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
0: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
1: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
0: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
1: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
0: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
1: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
0: ये आकाशवाणी है, आकाशवाणी है।
1: सुनहरे मित्रों के प्रोग्राम से तुहाडा स्वागत है जी। कौन बोल रहे हो?
2: सर मैं संदीप गल कर रहा जी, उन्ना हिमाचल प्रदेश तो।
1: जी संदीप जी, की हाल चाल है तुहाडा?
2: सर जी बहुत वधिया जी।
1: ते आज पहली बारी कीता इस प्रोग्राम दे विच कॉल?
2: नहीं सर, इस प्रोग्राम च पहली बारी कॉल कीता जी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा इस प्रोग्राम दे विच। ते प्रोग्राम च की सुनेहा लेके आए हो?
2: सर मैं सुनेहा नशियां दे विरुद्ध देना चाहना जी।
1: जी
2: कि जिदा पंजाब हो गया, अपने बॉर्डर एरिया हिमाचल हो गया, हिमाचल दे भी हुण बहुत सारे एरिया दे विच चिट्टे दी बहुत वरतों हो रही है जी, ते ओदे नाल जवानी साडी बहुत खराब हो रही हैगी है, ते यूथ जिहड़ा हैगा ओह इक पॉजिटिव डायरेक्शन नूं जाण दी
1: जी,
2: ते ओह इस मैं सुनेहा यही देना चाहना जी, अपनी जवानी नूं पूरे तुसीं पॉजिटिव तरीके दे विच लगाओ ते इहनूं खुशहाल बनाओ जी।
1: बिल्कुल, जिहड़ी तुहाडी एनर्जी है उहनूं सही रस्ते दे उत्ते लगाओ, क्योंकि देखो नौजवानों की बहुत जरूरत होंदी है हर देश नूं, हर सूबे नूं, है ना। ते जदों नौजवान अपनी एनर्जी सही रस्ते दे उत्ते लगांदे है, सही ढंग दे नाल जदों ओह जिंदगी दे विच अगे वधदे है, ते उहदे नाल पूरा देश भी अगे वधदा है। देखो नशियां दे विच असीं हमेशा इस प्रोग्राम दे विच सुनेहा दिंदे हां कि नशियां दे विच कुछ भी नहीं रख्या होया सवाए समा, पैसा ते सेहत बर्बाद करन दे। देखो परिवारां दे परिवार जिहड़े ओह खराब हो जांदे है।
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी,
1: है ना, ते इस चीज नूं समझना चाहिदा है।
2: सर कल असीं पढ़ रहे सी खबर अमृतसर वाले एरिया दी, भी एक मदर दे पंज मुंडे सीगे ते ओह पंजों दे पंजों इहदे चिट्टे दी भेंट चढ़ गए, ओह कई पर फैमिली दा बनूगा, सारियां फैमिलियां तबाह हो रहीयां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਜੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।

0: ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਮੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ 11:30 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ
1: ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧਮਾਲ ਜੀ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ
0: ਅਭੀ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਮ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ 12 ਬਜਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਆਈਏ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸੇ
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लौ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु अनुगत्य पोषण करिम।
2: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली, इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 12:05 हुए हैं श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: सिचूर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी। अनजान ने इस गाने को लिखा था। बप्पी लहरी का संगीत। आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में भूलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपके सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे
2: गीत।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज की ओर।

विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। अंजू हिशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।

में हाथ चल साथी चल। एक तो ये मौसम है।

गीता और गीता फिल्म से। ये दो गाना आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं, उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जी किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना है लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुर में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: जो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब दूंगा जिसने मुझे इतने चेहरे से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मेरे पास जाने की उड़ान नौकरी, उस पर इंडिया में जाने की, और जो जीजी म्यूजिक के साथ शुरू हुआ, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना। एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूं के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज में, शकील बदायूं की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और आज का ये कार्यक्रम सजा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मित्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मित्रा की आवाजें थी और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की।

0: दिलबाज फिल्म से ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में। उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: ये हम लोग उनके लिए है, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है, लेकिन उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

बात है हमारी।

Çok kötü.

0: धमजा
1: धमजा आ ठंडी हवा
0: आ धमजा ऐ काली धक्का
1: हमारे
0: आ ठंडी हवा

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत न बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दो धनी चार।

साथियों, दो दिनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बड़े बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हमारी श्रोता सुन रही थी कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया। श्रोताओं, हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय श्रोताओं 1 बजा है। बस कुछ ही देर में हम आपको अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देंगे।

अब से बस थोड़ी ही देर में श्रोताओ, 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार। प्रादेशिक पंजाबी समाचार भी हम आप तक पहुंचाएंगे दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर। और ये पंजाबी समाचार आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे। श्रोताओ, हमारे केंद्र से दोपहर 1:15 पर आप सुन सकते हैं कुछ फिल्मी गीत। फिल्मी गीत आप शाम 5:05 पर भी सुन पाएंगे। फिर विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे आपके लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर दोपहर 1:30 पर। वहीं से दोपहर 2 त्रिवेणी कार्यक्रम होता है। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार हम रिले करेंगे आपके लिए। समय नोट करें, दोपहर 2:15, शाम 5, शाम 6, रात 8:45 पर और फिर श्रोताओ रात 11 भी आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जो हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

हमारी मुंबई केंद्र से सदाबहार नगमे सुन सकते हैं आप दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम होता है दोपहर 3:00, वहीं से शाम 4:00 पिटारा कार्यक्रम होता है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सेलुलाइट के सितारे सिलसिले के तहत मुलाकात करेंगे अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर के साथ, और इनके साथ बातचीत करेंगी कांचन प्रकाश संगीत। शाम 5:30 पर हमारे केंद्र से हम प्रसारित करेंगे आपके लिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

शाम 6:30 पर आज सुनेंगे श्रोताओं अमृत पानी। विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम 7 बजे हर रोज की तरह सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा जयमाला। आपके लिए हम प्रादेशिक मुख्य समाचार प्रसारित करेंगे शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। कुछ पंजाबी गीत भी आप सुनेंगे शाम 7:47 पर और पंजाबी गीतों का ही कार्यक्रम सुर सांझ होगा रात 10:32 पर। मुंबई केंद्र से रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम होता है। श्रोताओं आज सुनेंगे इसमें झलकी विश्व प्रेमी सम्मेलन। नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक रात 8:15 पर। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम आपके लिए रात 9 बजे और आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर सुना जा सकेगा। आज के फनकार हैं अभिनेता महिपाल। मुंबई केंद्र से ही रात 10 बजे सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। तो श्रोताओं ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिली होने वाले कार्यक्रमों का।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 1:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार। इसके बाद

0: एक बजकर 10 मिनट पर जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
3: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
4: हम जानते हैं कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी रीमॉडलिंग परियोजना के आरसीसी पाइपलाइन के कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरे किए जाएं। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने यह निर्देश बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी रीमॉडलिंग परियोजना के औचक निरीक्षण के दौरान दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 41,30,00,000 रूपये की अनुमानित लागत से बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के रीमॉडलिंग कार्य को मंजूरी दी थी और इस परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो तथा सभी लंबित प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। सिंचाई मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूरे होने से चरखी दादरी शहर सहित आसपास के लगभग 35 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र के लगभग 2,30,000 लोगों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं स्थायी बनेगी। उन्होंने बताया कि सिंचाई हेतु बेहतर जल आपूर्ति व्यवस्था से लगभग 1,50,000 शहरी निवासियों तथा लगभग 80,000 ग्रामीण नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना आने वाले वर्षों में क्षेत्र की बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटरी के रीमॉडलिंग कार्य पूरा होने के बाद किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा पानी की आपूर्ति अधिक सुचारू और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। मेरा युवा भारत एवं केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जागरूकता कार्यक्रम और निबंध लेखक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों से परिचित कराना और उनमें राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के महत्व, भारत की वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास में युवाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:15 हुए हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: बोरा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: तीखा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार। अभी ऑर्डर करें www.tikharrenterprises.com पर।
2: और लीजिए अब सुनिए कुछ फिल्मी गीत।

हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अनजाना फिल्म से ये गीत सुना लीजिए। अब सुनिए मुकेश का गाया गीत, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। गीत की बोल आनंद बख्शी के हैं। श्रोताओं, ये धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

मुकेश के साथ लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर को। धरती कही पुकार के, ये है फिल्म का नाम। इस गीत की बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यालेलाल ने।

धरती कही पुकार की। इस फिल्म का गीत आपने सुना श्रोताओं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फिल्मी गीत आप सुन रहे थे विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में हम अपना अगला कार्यक्रम आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: या पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार

0: क्या
1: ये आकाशवाणी है?
0: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
0: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
0: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाए आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
0: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है।

श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे आज शाम 4 बजे पिटारा कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में आज सेलुलाइट की सितारे सिलसिले के तहत आप सुन पाएंगे अभिनेता सदाशिव अमरापुर के साथ की गई बातचीत। इनके साथ बात करेंगे कांचन प्रकाश संगीत। और याद रखिएगा, हमारे केंद्र से शाम 5:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। और लीजिए अब सुनिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से. आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की. हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे. लेकिन उससे पहले ये संदेश.
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल को किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है.
1: एक शानदार शख्सियत.
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया. एक लड़कपन का दौर था हमारा.
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी.
3: वो मेरे पूरे करियर का फंडिंग दौर था. इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरम से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया.
1: कुछ बेमिसाल किस्से.
3: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान नौकरी, इस पर इंडिया में जाने की, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए. ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ.
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: जाने

खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सबने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नजर आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है। सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज ही, कल ही मैंने एक फोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है, मेरी मम्मी के शाम

वो टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की चमक को देखकर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल।

और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की चमक को देखकर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फेहरिस्त पेश करता हूँ। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। उन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो मुझसे बिछड़ गए हैं वो मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की जिंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

बार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम आप सभी ने लिखा हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी, पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई। खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है, ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है, ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है, ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हूँ, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और जरा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है सुनिए जरा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे ललित महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाने सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आजादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूंगा कि मुझे वो हिम्मत फराहम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूं। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफर तय करते रहें। साथियों, बहुत जरूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बनाकर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं जरा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

किसी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूट कर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है, गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही है, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा यादगार शाम 27 मई साल 16 की है। 2016 की शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बेटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वही दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की है बातें। लिखते हैं, मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है। संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है।

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नजारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह देर तक बस चांद की हरकतों पर नजर रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

0: आग हुई।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुनिए।

नमस्कार श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन नर्सों के सम्मान में समर्पित है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली नर्सें केवल इलाज में ही नहीं बल्कि मरीजों को मानसिक सहारा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका धैर्य, करुणा और सेवा भाव उन्हें समाज में एक खास स्थान दिलाता है।

नर्स का कार्य केवल दवाइयां देना या मरीजों की देखभाल करना नहीं होता, बल्कि वे मरीजों के दर्द को समझती हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाती हैं। कई बार मरीज अपने परिवार से दूर होते हैं, ऐसे में ये परिचारिका ही तो उनका सहारा बनती है। कठिन परिस्थितियों में लंबे कार्य घंटों और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी नर्सों ने अपनी जान की

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें ये सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी मानवता है। ये दिन हमें नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम उनके कार्य की सराहना करें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। एक छोटा सा धन्यवाद और सम्मान भरा व्यवहार भी उनके कठिन परिश्रम को सार्थक बना सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगी और उसके परिजन और डॉक्टर के बीच महत्वपूर्ण सेतु होती हैं परिचारिकाएं। आज के दिन हम नर्सेस को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं।

0: मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान

0: आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से

0: का न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @yahyarnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेलेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूँ फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना है लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: जाता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं हुआ जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान नौकरी, इस पर इंडिया में जाने नौकरी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की, कसमों की और मोहब्बत में। फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने, और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का। शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार मखमली कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का
0: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ,
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे।
1: तो ऐसा ना करें। सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया, जैसे मैंने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती है, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं,
0: हाँ,
1: और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। खास तौर पर एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है। ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाए। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, हाँ, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीजें चलती हैं। और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं। कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों की गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं। अगर चंचल,
1: हालांकि समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे। आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है। लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता दस दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चल ही जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं? क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं? उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करते हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं।
1: हाँ,
0: क्या चल रहा है इन दिनों घर में? खूब सारी जो चिल्ला चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए तो घर में शांति है? सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलते हैं। और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं।
0: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं।
0: जी, और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में,
1: जी
0: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में।
1: जी,
0: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं तो दुकानों पर भी बैठी मिलती हैं, ऑफिसेज में भी मिल रही हैं।

0: घर का काम तो संभाल ही रही है और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही है।
1: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही है, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
0: जी,
1: जो कि एक महिला उद्यमी है और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
0: जी। आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
1: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यही रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
0: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है और जो उसका लाल रंग की जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से, जो रास्ते पर चादर से बिछी होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना।

0: और गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
1: सही बात है।
0: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
0: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं जब वो बहुत छोटा होता है तब उसे सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है, वो बहुत नाजुक होता है
1: जी।
0: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
1: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जाकर के देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए जब सब तरफ से लगे हो, या आपके बागीचे में लगे हो, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हो तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
0: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतजार कर रहे हैं, और जब वहां हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहां वहां जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
1: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रस्ते की निशानी बन जाता है।
0: हाँ।
1: नहीं तुम आगे वो रस्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है।
0: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। यह सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती है।
1: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी,
0: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
1: सही
0: के बाहर ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इस बार भी और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो है ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती हैं। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण

0: लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं, घर की खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय, ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चले। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं। और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है। और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज की सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा माहेश्वरी
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा

0: होते हैं, जो जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है। भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि बिल्कुल।
1: और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है, वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है।

0: प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है। भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
1: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
0: बिल्कुल।
1: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी है, वो है विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
0: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को। ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
1: वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
0: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
1: पर ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
0: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा की, तो उसकी पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
1: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
0: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
1: हाँ,
0: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते ही देखते शुगर कंपनी के कई उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे।
1: और वो ऐसा मानते हैं कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाया जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
0: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते हैं ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे।
0: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
1: जी,

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में सो सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी न किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता। एक और संदेश है, 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है, इसी तरह से एक अन्य

संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं। तो गीत सुने अभी जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं, और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं।

0: सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में है, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चिंजल। देखो एक संदेश ये कहता है कि गर्मी में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रही हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहां ना भटके, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है, तो सच में हमें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें, और वो कहानियां उनकी चार चार दिन पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े तेड़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखिए आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा हमने काटी हुई सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज्यादा ही, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी, और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगे तो फिर क्या ही बात है। तो देखो उनके बच्चों को, जब आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं,
0: हाँ,
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो वो भी बड़ी चाव से देखते हैं कि कैसे बड़ा हो रहा है।
0: इसी तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे, जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना
1: चलिए।

कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और चंचल वर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूंगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान है, बहुत बहुत बुरे इंसान है। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है इनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान है और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं

0: खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है। अच्छा। और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था।
1: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
0: जी।
1: और क्रिएटिव है
0: जी।
1: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
0: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
1: जी,
0: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
1: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
0: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
1: हाँ, और उसके बोल है मेरे दिल में है इकबाल।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था, और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारे स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो।

0: और बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो मनाट पे करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं नहीं, नाटक करता रहा
1: जी।
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सब खुशी की बात रहती थी। और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

रही न गीत पनघट पे किस दिन आएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी।

0: गया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन में ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो यही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूं तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीएम में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी

0: आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसे लगा था आपको?
0: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था, साहब 2 रुपया कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, लेकिन छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी,
0: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्न विकाई चेत, वो नाटक उसमें से उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी है
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहां गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे हैं,
1: उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया,
0: बोले उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दर्वी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह,
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं, फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जोड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए
0: जी।
1: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था फाइनल में आया था, वहां पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
0: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
1: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
0: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
1: जी
0: जरूर सुनेंगे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, धारवाकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे। अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इंडियन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव आमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतनी जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने मुझे याद आया सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आई आई बैठी है, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के जो औरंगाबाद से जो उनकी एक्टिंग स्कूल है वहां से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक

0: छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया, तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया।

0: और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए, हैंड्स अप नाटक किया और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलाने से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्स अप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की और ये कौन सी शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे हैं, 2.5-3 सीन गए हैं, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो, स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था, मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया,
1: क्योंकि आपके अर्ध सत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए
0: जी जी, जी। मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बेटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, वो उस फिल्म में बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग

0: होती है, मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ।
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट और बड़े, मुझे रोल तो दिया उन्होंने लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: महारानी का रोल बहुत जरूरी है और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और इसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ, बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी जी।
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
0: मुझे ऐसा लगता है कि
1: उत्साहित करना था।
0: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
1: जी,
0: वो ही आपका इसमें
1: जी
0: हुनर।
1: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते हो क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक जमाने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है वो यादगारें हमें काम आती है
0: जी,
1: वो बहुत बढ़िया होती है
0: जी।
1: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
0: जी।
1: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है। ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत, देखने ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग, हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
0: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
1: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन

0: नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो, दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो। हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहां मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक किमयागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक किमया ही हो गई जैसे
0: जी, जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी।
1: तो काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी, जी। बहुत दिया देने

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेलुलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अंगापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 5 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी समाचारों के लिए, बस अब से कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान

0: परिषद की स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉ. चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि एआई का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:05 हुए हैं। अब से लेकर 5:30 बजे तक आइए आनंद लिया जाए कुछ फिल्मी गानों का। आज फिल्म संगीत में कुछ नए दौर के गाने हैं।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत में अगला गाना हमने चुना है मोहित चौहान की आवाज में। ये फिल्म है ऊंचाई।

0: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
1: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
0: ये आकाशवाणी है।
1: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
0: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
1: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
0: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
1: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
0: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
1: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई

0: कहानियों के साथ
1: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं। कुछ नए दौर के गाने आज आपके लिए।

अभी आपने कबीर सिंह फिल्म का ये गीत सुना, सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाजों में। और ये गाना है रॉनकिनी गुप्ता की आवाज में। ये फिल्म है मुखबिर

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आप सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड

0: एंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
1: है जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
1: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहनें
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
0: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।

0: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
1: क्यों?
0: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
1: अच्छा, तुमने खुद देखे?
0: हाँ।
1: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
0: धीरे से, वहाँ ऊंचाई की।
1: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
3: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तू कुछ बोलता क्यों नहीं?
3: विद्या, विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लेटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
5: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
5: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
5: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
5: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
5: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
5: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
5: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
5: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
5: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है
5: भाई? तापमान बढ़ने से

0: शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
1: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
2: ठंडक में खेले भरपूर। ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
4: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
5: इन्हें हमारा सलाम।
3: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
6: साथियों नमस्कार।
3: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
6: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
3: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
3: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
6: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
3: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से

0: सम्मानित किया गया।
1: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
1: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना

0: अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं,
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा
1: सलाम।

0: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक का। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों

0: को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट से इस वेले तुसी आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र ट्यून किया है FM 107.2 MHz से।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लोपेश है एक नॉन फिल्मी गीत। गुरु रंधावा ते निखिता गांधी दियां आवाज़ां

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार पर बल दे रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को ली गई नीट परीक्षा रद्द की, नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मिरीपिरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर मिरीपिरी न्यास द्वारा दायर याचिका रद्द की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा परिणाम 84.67% रहा और हरियाणा निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों को आम चुनाव एवं उपचुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी की। मतगणना कल 8 बजे शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। श्री प्रधान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। अनुसंधान परिषद की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा,
1: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को भारत के हजार वर्षों के इतिहास, संघर्षों और सांस्कृतिक चेतना से प्रेरणा लेकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई को

0: सौंपती है। एजेंसी ने कहा है कि यह निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मिरीपीरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर आज मिरीपीरी न्यास द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया। कॉलेज का प्रबंध अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति संभालेगी। फैसला आते ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि उन्हें कानून पर विश्वास था।
1: हरियाणा के सिखा वास्ते अज बहुत वड्डा फैसला आया है। मिरीपीरी मैडिकल कॉलेज शाहबादी 1991 इसकी नींह रखी गई। 2004 में मेडिकल कॉलेज बनना शुरू होया। अज तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बिल्डिंगा तैयार कीतियां ने वो अपने खर्चे ते या लोन लेके कीतियां ने। साडा केस मिरीपीरी मैडिकल कॉलेज का हाईकोर्ट चलता सी पिया। परसों बहस होने तो बाद अज जो उन्होंने जेडी श्रोमणी कमेटी की सी अपील वो डिसमिस की गई है। हुण मिरीपीरी मैडिकल कॉलेज की जेडी मालिक है वो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन चुकी है।
0: उन्होंने कहा अस्पताल पर 100 करोड़ रुपए का ऋण है जिसका भुगतान अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सिंग अधिकारियों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज शाम 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम 84.67% रहा। भिवानी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने परिणामों से संबंधित आंकड़े साझा किए।
2: 2,42,857 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी कटाव में अपियर हुए थे जिसमें से 2,05,618 परीक्षार्थी पास हुए हैं और कुल पास प्रतिशत जो है वो 84.67% रहा। छात्र और छात्राओं के विषय में बात करूं तो कुल 1,22,963 छात्र अपियर हुए थे जिसमें से 1,151 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उनका परीक्षा परिणाम 81.45% रहा है। 1,19,893 छात्राएं अपियर हुई थी और 1,05,467 छात्राएं पास हुई हैं। छात्राओं का जो परीक्षा परिणाम है वह 87.97% रहा है। छात्राएं ही उनका परीक्षा परिणाम 6.52% छात्रों की अपेक्षा ज्यादा रहा है।
0: उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रदेश की बेटियों ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। डॉ. पवन कुमार ने बताया कि प्रदेश के जिलों में चरखी दादरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं जिला नूह इस सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों का पास प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कुछ बेहतर रहा।
2: रूरल में जो पास प्रतिशत है वह 1,71,270 परीक्षार्थी जो थे उनमें से 1,45,553 विद्यार्थी परीक्षार्थी जो पास हुए हैं और रूरल का पास प्रतिशत 84.98% रहा। इसी प्रकार से अर्बन की बात यदि हम करें, अर्बन में कुल 77,586 परीक्षार्थी अपियर हुए थे जिसमें से 60,065 परीक्षार्थी पास हुए हैं और अर्बन का परीक्षा परिणाम 83.91% रहा है, 9.1% रहा है। यानी जो रूरल का परीक्षा परिणाम है वह अर्बन परीक्षा परिणाम से बेहतर है।
0: उन्होंने कहा कि जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है उन्हें पुनर्जांच और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा दी जाएगी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों के आम एवं उपचुनावों की मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं

0: रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नगर निकाय चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। प्रत्येक चरण की निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। पंचकुला नगर निगम में मतगणना को लेकर उपमंडल दंडाधिकारी संयम गर्ग ने बताया,
1: पंचकुला नगर निगम इलेक्शंस की काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेयर और वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग साइमल्टेनियसली चलेगी। इसके लिए 20 टेबल का प्रबंध किया गया है, जिसमें से 10 टेबल मेयर की काउंटिंग के लिए और 10 टेबल वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं।
0: उन्होंने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही मतगणना स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार पर बल दे रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को ली गई नीट परीक्षा रद्द की। नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मीरीपीरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर मीरीपीरी न्यास द्वारा दायर याचिका रद्द की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा परिणाम 84.67% रहा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार ए आकाशवाणी है हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो पहला बुलेटिन दी खास खबरां मेडिकल दाखिल ले नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने दिल सामा कारण रद्द सीबीआई जांच से दिए गए हुक्म सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मुलाजमों से जुड़े 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने आज संयुक्त व्यापार मंत्री का वाद विचार संभाला पंजाब के सेहत परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मेरा घर मेरे नाम योजना तहत 393 परिवारों को मालकाना हक सौंपदिया मलकियत के दस्तावेज वंडे आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद नाल होगा राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मेडिकल दाखिलों लिए 3 मई में हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है एनटीए ने दसिया है कि सरकार ने पेपर लीक के इल्जामों की डूंघाई नाल जांच करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को भेजने का फैसला किया है एजेंसी ने यह भी कहा है कि यह फैसला एनटीए वालों केंद्रीय एजेंसी में तालमेल करके जांच के नतीजे का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है परीक्षा की एक नवी तरीक वक्रे तौर पर नोटिफाई की जाएगी रजिस्ट्रेशन वेरवे उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 चुने गए परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं है परीक्षा लिए दोबारा रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं होगी और कोई वादू परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मुलाजमों नाल जुड़े 20 लाख रुपए के रिश्वतखोरी मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है एक होर मुलजम डीजीपी विजिलेंस पंजाब के रीडर ओपी राणा फरारे तो उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी ने यह गिरफ्तारियां पंजाब राष्ट्र टैक्स अधिकारी की शिकायत तो बाद की गई जिसने इल्जाम लाया कि मुलजम ने डायरेक्टर जनरल विजिलेंस पंजाब के दफ्तर में उस विरुद्ध विचार गोचरे पर शिकायत को बंद करने रिश्वत की मांग की थी सीबीआई मुताबिक मुकतसर जिले के मलोटे तो मुलजम कथित तौर पर सीनियर विजिलेंस अधिकारियों लिए विचोले वजो काम कर रहे सन जिन्हों डीजीपी विजिलेंस का रीडर भी शामिल सी

कथित तौर पर शिकायतकर्ता ने भरोसा दिता है कि रिश्वत की रकम की अदायगी तो बाद मामला सुलझाया जा सकता है। सीबीआई कथित तौर पर वड्डे भ्रष्टाचार के गठजोड़ में होर व्यक्तियों की संभावित शमूलियत की भी जांच कर रही है। इस तो पहले एजेंसी ने कल देर रात मोहाली में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर से छापा मारिया। इस दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के हल्कियां ने कहा कि एजेंसी सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करेगी और जेकर कोई अधिकारी शामिल पाया जाता है तो ढुकवी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने आज सनत के व्यापार मंत्री का भादू चार संभाल लिया। वह पहले ही रोजगार उत्पत्ति हुनर विकास और सिखलाई नवी से नवी आने वाले ऊर्जा स्रोत सुशासन से सूचना तकनोलॉजी प्रिंटिंग स्टेशनरी के विभाग संभाल रहे हैं। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी वालों कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सनत व्यापार मंत्रालय का चार्ज दिया गया है। होर दो मंत्री जिन्होंने वादों चार्ज सौंपे गए हैं उन्होंने तरनप्रीत सिंह सौन जिन्होंने बिजली विभाग सौंपे गए और हरजोत सिंह पैंस जिन्होंने स्थानक सरकार विभाग का चार्ज दिया गया शामिल है। ये खबरें तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RN-AIR जलंधर और यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। पटियाला के पिंड गोड़गढ़ विखे अज पंजाब सरकार की लोका पक्षी योजना मेरा घर मेरे नाह तहत पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने 393 परिवारों नूं मालकाना हक सौंपे ते लाभपात्रियों नूं मलकियत दे दस्तावेज वंडे। इस मौके समागम नूं संबोधन करदे हुए डॉ बलबीर सिंह ने कहा कि मेरा घर मेरे नाह योजना पंजाब सरकार की एक इतिहासक अते लोक केंद्रित पहल है जिसका मकसद उन्हां लोकां नूं कानूनी मालकाना हक प्रदान करना जो कई पीढ़ियां तों अपने घर रह रहे सन पर कानूनी दस्तावेजों तो माझे सन। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हेठ पंजाब सरकार लोगों को उनके हक देने ते प्रशासनिक पारदर्शिता यकीनी बनाने लिए वचनबद्ध है। सेहत मंत्री ने बताया कि इस योजना तहत पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग नाल अमल में लिया गई है। घर का विस्थार पूर्वक सर्वेक्षण रिकॉर्ड की जांच तस्दीक तो बाद ही योग परिवारों को मलकियत के अधिकार दिए गए हैं। इस नाल हुण लोगों को ना सिर्फ कानूनी सुरक्षा मिलेगी सगों अपने घर जुड़िया होर सरकारी सहूलतों ते योजनावां दा भी आसानी नाल लाभ लै सकणगे। कल पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों दसवीं जमात के नतीजे ऐलाने गए। इन्होंने नतीजों में हरलीन शर्मा ने 650 विचों 646 भाव 99.38 फीसदी अंकों नाल पंजाब भर में पहला स्थान ते मनी महेश शर्मा ते रिया राणी ने 650 विचों 645 भाव 99.23 फीसदी अंकों नाल क्रमवार दूजा ते तीजा स्थान हासिल किया। इन्होंने तिना विद्यार्थियों नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों विशेष तौर ते सम्मानित किया गया। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि ना हुण हर बच्चियां दे अंत तक मेहनत उन्होंने माता पिता दीआं प्रार्थनावां ते अध्यापकां दे सही मार्गदर्शन सदका पूरे पंजाब दा सिर मान नाल उच्चा होया है। उन्होंने कहा कि सरकारी ते प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी लगातार मेहनत ते लगन नाल पंजाब दा नां देश भर विच रोशन कर रहे ने जो कि माण वाली गल है। अबोहर हनुमानगढ़ सड़क ते रामसरा पिंड ने अजिक दर्दनाक हादसे विच 3 लोगों की मौत हो गई ते एक औरत ते एक बच्चा जख्मी हो गए। खबर मुताबिक एक बलेरो गड्डी एक ई रिक्शा नाल टकरा गई। ई रिक्शा चालक ते ई रिक्शा सवार 60 साल औरत ते एक 4 साल दे बच्चे दी मौके ते ही मौत हो गई। एक होर औरत ते एक बच्चा जख्मी हो गए ते उन्हां नूं इलाज लई अबोहर ते सरकारी हस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। बलेरो दे चालक ने दस्सिया कि सड़क ते टोए कारण वाहन अचानक कंट्रोल बैठा अते सामने आ रहे ई रिक्शा नाल टकरा गया जिस नाल ए हादसा वापरिया। आज सरहंद फतेह दिवस मनाया जा रहा है। महान सिख जनरल बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों 1710 विच आज दे ही दिन सरहंद फतेह करन दी याद विच सरहंद फतेह दिवस मनाया जांदा है। इस मौके मोहाली दे पिंड चप्पड़छड़ी तो सरहंद फतेह मार्च च रवाना होया। इस तो पहला चप्पड़छड़ी स्थित गुरुद्वारा श्री फतेह जंग साहिब विच अखंड पाठ साहिब ते भोग पा के अरदास कीती गई। ढाडी जत्थियां ने वारा गा के बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी फतेह गाथा सुनाई। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार कुलदीप सिंह वड़गश ते होर शख्सियतां मौजूद सन। फतेह मार्च विच दूरों दूरों आई संगत वड्डी गिणती च पहुंची ते गुरबाणी दे समूह कारण नाल माहौल शरदामय हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने महान सिख योधे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे सरहंद फतेह दिवस ते देशवासियां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बेइंसाफी विरुद्ध संघर्ष

आशा भोसले दी आवाज विच ए शब्द तुसी सरवन कीता। ए नी मोहम्मद रफी ते नीलम साहनी।

0: कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: और सुखविंदर सिंह को सुना। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी A.R. रहमान ने। लीजिए प्रस्तुत है भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का था। अब सुनिए बॉबी फिल्म में लता मंगेशकर और शैलेंद्र को पुन लिखे हैं आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

फौजी भाइयों को अब सुनवा रहे हैं बॉर्डर फिल्म का गीत। आवाज दी है रूप कुमार राठौर ने, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने, बोल जावेद अख्तर के।

धुरंधर द रिवेंज। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज और संगीत खास साहब और शाश्वत सचदेव की, बोल नुसरत फतेह अली खां के।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग खूने आधार जैसा ना कोई,
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172।

करण औजला ते नेहा कक्कड़ दियां आवाज़ां च ये पहला गीत पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम दा अगला गीत पेश कर रहे हैं मिस पूजा दी आवाज़ विच।

0: श्रोताओं, आज हवा महल में आपको सुनवाते हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी झलकी विश्व प्रेमी सम्मेलन। निर्देशक दीना नाथ।
1: अरे यहाँ इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? अरे अरे अरे अरे हैं? अरे सिर्फ भीड़ ही नहीं, यहाँ तो एक शानदार पंडाल भी खड़ा हो गया। तो क्या यहाँ कोई सम्मेलन हो रहा है? लेकिन लहरों के मेले में सम्मेलन जैसी गंभीर चीज का क्या काम? लेकिन ठहरिए, पंडाल के बाहर लगे इस बोर्ड को जरा पढ़कर तो देख लूं। मोटे मोटे अक्षरों में हमारे मित्र मदन मोहन खन्ना लिख रहे हैं विश्व प्रेमी सम्मेलन।
2: विश्व प्रेमियों के सम्मेलन में मैं आप सब डेलीगेट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, ये पहला अवसर है कि संसार भर के प्रसिद्ध प्रेमी एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। हर प्रेमी को इजाजत है कि वो दिल खोलकर अपनी दास्तान गम सुनाए, ताकि संसार सुने और देखे कि उसने दो दिलों को ना मिलाकर क्या जुल्म किया है। प्रेमियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो बड़े भावुक होते हैं। इसलिए जो प्रेमी दूसरे प्रेमियों की दर्दनाक दास्तान सुनकर या अपनी प्रेमिका को याद करके रोना चाहे, वो कृपा करके पंडाल से बाहर चले जाएं, क्योंकि प्रेमियों के आंसू कोई मामूली आंसू नहीं होते, एक एक किलो का आंसू होता है जनाब। रोने पे आए तो नदियां बहा दें, पंडाल में कहीं बाढ़ ना आ जाए, इसलिए पंडाल के बाहर आंसू खाने यानी वीपिंग बूथ लगाए गए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर प्रेमी स्वयं स्टेज पर आकर अपना परिचय दे। आप आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए।
3: जी मैं फरहाद हूँ।
4: फरहाद?
2: प्रेमियों, भाइयों, आपके सामने विश्व के प्रसिद्ध प्रेमी फरहाद खड़े हैं।
5: खोटा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ।
6: आप ठीक कहते हैं, मुझे कुछ भी न मिला, पहाड़ खोदकर उसमें मैंने नहर बनाई।
7: अकेले?
6: जी हाँ बिल्कुल अकेले। और साहब अंदाजा लगाइए, मेरे पास पेशे यानी कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था।
7: क्या पहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट या बुलडोजर अवेलेबल नहीं थे?
6: अजी साहब छोड़िए, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं था।
7: ओहो हो, इतना बड़ा डैम बनाने के लिए कोई एड भी नहीं मिला आपको?
6: एड? आप सहायता की बात करते हैं। खैर साहब, 20 साल की मेहनत के बाद नहर तो बन गई, मगर एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई।
7: वो क्या मिस्टर?
6: मुझे हुक्म हुआ कि मैं नहर में पानी की जगह दूध डालूं।
7: वो किस लिए मिस्टर?
6: ताकि शर्त के मुताबिक वो मेरी बनाई हुई नहर में नहा सके।
7: ओ आई सी, दूध में नहाए।
5: हाँ, ताकि दूधो नहाए और पूतो पले।

0: मिस्टर फरहाद, शीरी के डैडी ने आपको स्विमिंग पूल बनाने के लिए क्यों नहीं कहा?
1: मैं क्या बताऊं साहब, मैं शीरी का प्रेमी हूं, शीरी का डैडी नहीं।
0: आई एम सॉरी। अच्छा साहब, फिर क्या हुआ?
1: अब और कुछ नहीं कहा जाता, कलेजा मुंह को आता है, बेसाख्ता मेरी जबान से शेर निकला ही चाहता है। मर जाएंगे पर हम कभी शिकवा न करेंगे, सर देंगे मगर यार को रुसवा न करेंगे, हम हश्र में इस खून का चर्चा न करेंगे।
2: आप कहाँ चले आ रहे हैं? आप नहीं जानते ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है?
3: जी मैं भी एक प्रेमी हूँ।
2: आप और प्रेमी?
3: वैसे और प्रेमियाँ तो कोई खास मोर लगी होती है, मैं महिवाल हूँ।
2: महिवाल?
0: इसी सोनी के अलावा?
3: जी
2: सोनी के दीवाने महिवाल। इन्हें मंच पर आने दिया जाए।
4: भैया भारतवर्ष से डेलीगेट आ
0: रहे हैं।
3: प्रेमियों, मैं भी आपकी तरह सताया हुआ एक प्रेमी हूं, मैंने भी सोनी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपको शायद मालूम नहीं, मेरी सोनी नु कबाब खान का बहुत शौक थी, पर एक दिन जब मुझे उसको मिलना था, मैं कोई मछली ना पकड़ सका, बस चला मैंने अपनी जान काट कर कबाब बनाया और अपने हाथों से सोनी की नजर की।
0: लेकिन मिस्टर महिवाल, जब सोनी आपकी दीवानी थी तो फिर आपको समाज के खिलाफ क्या शिकायत
3: है? आप सुनिए तो सही, सोनी की ननद को हमारा मिलना ग्वारा ना था। उसने हमारे खिलाफ एक बड़ी खतरनाक चाल चल ली। सोनी के दरिया पार करने वाले पक्के कड़े की जगह और उस कमबख्त ने कच्चा कड़ा रख देता।
0: मिस्टर महिवाल, क्या मैं सोनी को तैरना नहीं आता था?
3: जी नहीं।
0: वॉट ए पिटी, तो उसके पास स्विमिंग बैग्स भी नहीं था, बेसबॉल का इंतजाम कर लिया होता मैन। फिर क्या हुआ?
3: फिर वही होया जो हम जैसे प्रेमियों के साथ होंदा आया है, वो डूब गई। मैंने दूसरे किनारे से छलांग भी लगाई पर उस ताई पहुंच ना सकिया और हम दोनों कट्ठे इस जालिम समाज के पंजों से आजाद हो गए।
0: आपने तो मरकर दुनिया से खलास पाया, मगर हमारे साथ जो समाज ने जुलम किया वो आप सुन भी नहीं सकेगा।
2: ये आप सुनाए, हम सब सुन लेंगे।
4: आप है कौन साहब? कौन साहब है?
0: जी मैं रोमियो हूँ।
4: रोमियो?
2: रोमियो, सुनिए, अब आपके सामने यूरोप के प्रसिद्ध प्रेमी रोमियो खड़े हैं।
5: क्या आप अपने साथ वो सास भी लाए जिन्हों छेड़कर अपनी जूलियट को खिड़की तले बुलाते थे?
2: जरा सुनाइए तो हम भी सुने वो धुन।
0: वो नगमा मेरी प्यारी जूलियट के लिए था, अब किसके लिए बजाओ?
2: बजाइए, शर्माइए नहीं, तबले पर संगत मैं कर दूंगा। बजाइए। अगर आप सुर में नहीं है तो ना सही, ये प्रेमी सम्मेलन है, संगीत सम्मेलन। कौन हो तुम?
1: मैं हूँ दीवाना।
2: हाँ,
1: दीवाना हूँ, लैला का सौदाई।
2: आइए मजनू साहब, मंच पर आइए, यहाँ तशरीफ लाइए। हाँ, और अपने लंबे आश की तजुर्बे से फैजियाब कीजिए। आइए ना।
1: क्या मुझे मेरी लैला मिलेगी?
2: देखिए मिस्टर कैश, ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है और आप हमारे निमंत्रण पर भारत आए।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी लैला को ढूंढने आया हूँ।
0: मिस्टर मजनू, सुना है लैला कोई खूबसूरत लड़की नहीं था और रात की तरह एकदम डार्क था।
1: जी हाँ, इसीलिए उसका नाम लैला रखा गया। मेरे दिल और आँखों पे किया जादू मोहब्बत ने, मुझे अंधा बनाया लैला तेरी सारी सूरत ने।
0: लेकिन मिस्टर मजनू, हमारा मतलब है एक काली सी लड़की जिसके लिए आपने दीवानेपन का रिकॉर्ड कायम कर रखा है, आखिर उसमें क्या था ऐसी बात?
1: मिस्टर रोमियो, लैला के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। लैला की खूबसूरती देखनी है तो मजनू बनकर देखो, मजनू की निगाहों से देखो, साज बजा कर नहीं।
0: देखिए मिस्टर मजनू, मेरे सास के बारे में कुछ ना कहिएगा, मैं अपने सास से वो नकमे निकाल सकता हूँ जिससे एक लैला को क्या दुनिया भर की लैलाएं खींची चल रही
1: हैं। मिस्टर रोमियो, अपने मुंह में मिट्ठू ना बनो, जूलियट तो हासिल कर ना सके, लैला खींची चल रही
2: है। देखिए साहब, सुनिए तो सुनिए सुनिए सुनिए, खामखा बहस में ना पड़िए, बहस से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।
1: जी साहब, आप मिस्टर रोमियो की जबान को लगाम दीजिए वरना
0: मैं बताना चाहूं, एटिकेट से बात कीजिए।
2: साहब सुनिए, आप दोनों हमारे मेहमान हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह महान हैं, रोमियो साहब की जूलियट को कोई छीन नहीं सकता।

0: और मजनू भाई, लैला केवल आप ही की लैला
1: है। कहाँ है लैला? कहाँ है मेरी लैला? मुझे मेरी लैला नहीं।
0: मजनू भाई, ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है, हम प्रेमिकाओं को मिलाने का काम नहीं करते।
1: तो साहब, अगर मुझे मेरी लैला नहीं मिलेगी तो मेरा यहाँ क्या काम?
0: अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं मजनू भाई?
1: अपनी लैला को ढूंढने कर गई आने का वादा, एक जमाना हो गया, चश्मे मजनू को है बस लैला तेरा इंतजार। लैला,
0: लैला। भाइयों, भाइयों, मुझे खेद है मजनू साहब के वॉकआउट कर जाने से सम्मेलन का वातावरण फिर गंभीर हो गया है। मैं देख रहा हूं कुछ प्रेमी आहें भर रहे हैं, कुछ प्रेमी रोने के मूड में है। मुझे भी 2 मिनट का अवकाश दीजिए, मैं जरा आंसू खाने में जाकर 2-4 आंसू बहाना चाहता
2: हूँ। आपको किसकी याद में आंसू बहाना है
0: जी? हाय, हीर की याद में।
3: हीर की याद में? वो आप
0: जी, मैं राजा हूँ।
2: ओ, मिस हीर का लवा,
0: प्रेमी राजा।
4: देखिए, कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरी यही दरखास्त है कि सबसे पहले हम सब प्रेमियों का एक ग्रुप फोटोग्राफ।
5: फोटोग्राफर तैयार है? बस जनाब, आप सब प्रेमी कैमरे की ओर देखें, जरा स्माइल दें, मुस्कुराएं।
4: स्माइल, मुस्कुराएं?
2: ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर, हमसे तो हमारी मुस्कुराहट छीन ली गई, हम मुस्कुराए कहाँ से?
4: आप कौन हैं?
6: जी, मैं एक लड़की हूँ।
0: वो तो हम भी देख रहे हैं।
6: तो जाने दीजिए ना।
0: आपको कहाँ जाना है?
6: स्टेज पर।
0: क्यों?
6: प्रेमियों के पास।
0: आप इनमें से किसी की प्रेमिका हैं?
6: जी नहीं।
0: तो आपको इनसे क्या काम?
6: जी, मुझे तो इन प्रेमियों से ऑटोग्राफ।
0: ऑटोग्राफ? अच्छा,
6: आप
2: क्या समझे? लाइए लाइए, मैं आपको ऑटोग्राफ देता हूँ। आई एम रोमियो।
0: मैं आपको चंद हीर के शेर भी लिख दूंगा, मैं राजा हूँ।
4: इनको छोड़िए,
0: मैं इन सबसे बड़ा प्रेमी हूँ। देखिए देखिए, मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई है। मैं फरहाद हूँ, मैंने सबसे ज्यादा तकलीफें सही है।
7: और मैम जी, और मुझे दस्तखत करने तो नहीं आते, पर अपनी ऑटोग्राफ वाली किताब पर मारा अंगूठा ही लगा लो। मैम, मैं वहां नहीं हूँ।
0: मैं साहब, मेरा मतलब है, क्या आप आज शाम फ्री हैं?
6: जी, मैं आज शाम? क्यों मिस्टर राजा?
4: वो देखिए, तो क्या कल मेरे साथ कहीं कैनॉट प्लेस में कॉफी पी सकती हैं?
6: मिस्टर फरहाद, आपके साथ कॉफी?
7: मैं क्या, हमारे साथ भी कुछ मक्की की रोटी और साग का प्रोग्राम बना लो। मैम जी,
6: महिमान जी, आप क्या कह रहे हैं?
2: कोई बात नहीं, डिनर के लिए फ्री नहीं है आप, तो डांस के लिए हम अपने आप को पेश करता है।
6: आपके साथ डांस? मैं कुछ समझी नहीं।
2: ओह मिस, हम आपको वो नगमा सुनाएगा जिसे सुनकर जूलियट खिड़की से आ जाया करता था। चलिए
8: ठहरिए, आप इन्हें कहाँ लिए जा रहे हैं?
0: आप कौन है?
7: जी, मैं रीटा का प्रेमी।
0: रीटा? कौन रीटा?
7: भाई, हमने तो आज तक रीटा नाम की कोई प्रेमिका नहीं सुनी।
0: आपका नाम क्या है मिस्टर?
7: जी, मैं कुमार हूँ।
8: ओए कुमार, ओए तू ही कच्चा कड़ा बनाया थी।
0: कुमार?
8: लेकिन मुझसे कुमार
0: हमने कभी आपका नाम नहीं सुना और ना ही किताबों में पढ़ा है।
2: हमने भी कभी इनका नाम नहीं सुना ना किताबों में पढ़ा।
0: आप किस किस्म के प्रेमी? आप बोलते तो नहीं।
7: जी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं एक कामयाब प्रेमी।
0: कामयाब प्रेमी?
7: जी हाँ, आपकी तरह नाकाम प्रेमी नहीं हूँ।
0: कीमत पर?
7: मैं मॉडर्न प्रेमी। भाई, ये कौन सी किस्म हुई? मैं आपकी किस्म का प्रेमी नहीं हूँ। एक खूबसूरत लड़की देखी और फिसल गए।
6: मुझे मालूम नहीं था कि आजकल प्रेमी भी नकली बनने लगे हैं, उनमें भी और चीजों की तरह मिलावट आ गई है। कहाँ गए वो खालिस प्रेमी और उनका अमर प्रेम?
7: चलो रीटा, चले, ये सब ढोंग है।
6: चलो
7: सब प्रेमी नकली।
6: और सब प्रेमी सुने, मेरा आज का लंच, इवनिंग टी, डिनर और डांस सब मिस्टर कुमार के साथ है।
2: मिस्टर कुमार के साथ?
6: जी हाँ, अब आप इतनी नाम से पंडाल से बाहर जाकर आंसू खाने में अपनी अपनी प्रेमिकाओं को याद करके खूब आंसू बहाएं। हमें इजाजत दीजिए, हमें आपके तजुर्बे से कुछ नहीं लेना। बाय बाय।
7: ओ मैम,
8: प्रेमियों, ओ भाइयों, आइए सब आंसू खाने में आंसू।
9: विश्व प्रेमी सम्मेलन, मदन मोहन खन्ना की लिखी ये झलकी अभी आपने सुनी। निर्देशक थे दीनानाथ।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश प्रीतम के संगीत निर्देशन में बोल कैसरुल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव की आवाज शाश्वत सिंह की, फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

को मेरी कसम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत राघव चैतन्य की आवाज में, बोल विक्रम भट्ट के संगीत, प्रतीक वालिया का।

0: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: चितलोक कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए अब सुनिए तुमको मेरी कसम, इस फिल्म का गीत यासिर देसाई की आवाज में।

0: तुमको मेरी कसम। अभी आपने इस फिल्म में यासिर देसाई को सुना। गीत लिखा था श्वेता बोथरा ने, संगीत प्रतीक वालिया का था।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
0: अब सुनिए कौशल किशोर का संगीत बद्ध किया और उन्हीं का गाया गीत हक फिल्म से। इस गीत को लिखा है कौशल किशोर ने, संगीत है विशाल मिश्रा का और आवाज भी विशाल मिश्रा की।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई यानी पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हरी भोली।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

0: अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।
1: जरा

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

निर्झर झरना है और इस निर्झर में बह जाता है हमारा मन। नहीं रोक पाते हम प्रेम के निर्झर को, वो बहता जाता है जहां तक धरती है वहां तक है प्यार का आलम।

कतरा कतरा भीगता है मन, बूंद बूंद बरसती हैं यादें, हर्फ हर्फ झरते हैं ख्वाबों के नूर, मीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल, और सदी तक मोहब्बत पर कायम रहने वाले लोग।

तेज रफ्तार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। गहराई घटाएं, काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक नर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

आज मन की नोटबुक में लिखे हैं कुछ गुलाबी शब्द, कुछ सुर, सप्तक, आरोह अवरोह, और गुनगुनाया है प्रेम गीत। लिखा है खामोश अफसाना, पर शोर के इस दौर में कौन सुनता है खामोशी की सदा।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। न रहा अब अपने पास वो दिल का खजाना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब, जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी, जब हर सुबह हरे रंग के कोपल खिलते थे, खिले हुए गुलाब को देखकर मुस्कुराकर बतकही चढ़ती थी। सब कुछ तो है पर नहीं है बहुत कुछ जिसकी है चाहत।

मोहब्बत एक कहानी है, एक राग है मोहब्बत, एक छंद है, एक कविता है मोहब्बत। मोहब्बत इबादत है, जो लिखता है मोहब्बत अपनी जिंदगी में, वो नफरत के चिंगारी से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है, वो सिर्फ खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत, वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: चाचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामने और उज्जवल बनाए। वीको टर्मर क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
0: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz 10:03 हुई नहीं हूं तक।

0: बीमा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुरसांझ प्रोग्राम च एक बार फिर असीं तुहाडा स्वागत करते हैं इस गीत दे नाल।

0: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
0: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: श्रोतियो, इस ब्रेक तो पहला तुसी बी प्राग ते जानी दी आवाज़ां च गीत सुनिया चांजर। सुरसांझ प्रोग्राम च अगले कलाकार ने AS कंग

0: ਏਐਸ ਕੰਗ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਰਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
3: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं,

अमरिंदर गिल दा गाया एक गीत सी सुरसांझ प्रोग्राम दे आखिर च लखविंदर वडाली दी आवाज़ विच एक गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।

0: जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ 11:05 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।